असली आई है तो लीव लाहौर, चारों तरफ हाउसेस पर इश्क़ है, वे कुछ सीधा